चाहिए अपने खेती बाड़ी में उन समस्या को सर जहाँ नाम न सुने समाधान को पाए तो अच्छा हो जाए गैस कर देना। अरे सुन,

अपने बैठा नींद दिखाई दी खाना खत्म हो गुस्सा। बर्दिया में एक बड़ी सरकारी भीड़ मृत खाना पड़े गुस्सा। ये गांव पालिका वार्ड में छह कसाई दौड़ी नजीक

0: Añádale un poco de la cama, son más fáciles para el barrio, pero además de la cruz, la acción y la cruz, el poco de la cama, la letra para el cambio está con la osa, la cama, son los libros, los amores, con la cama, la cama.
1: Libio, con la parte central, son los libros de la lista de listo.
2: आपका खुद और आपको पूरी रोकों सभी को जानते को एक घंटा के जो परिवार इस लगाने शुरू करो सौभाग्य से हम आपको खुद बहुत बात देखना स्वस्थ और प्यार उसे रहो का विशेष जिसका निपाल करो स्वास्थ्य के लिए करो
1: रेडियो गुलाबा एफएम पर जल्दी को जारी संदेश
2: ए भाई ए भाई बॉक्स तो बॉक्स की बात हो रही है
1: Thank you.

0: संभव यदि प्रतिमा आयरन कैल्शियम आयरन सुधाई स्वस्थ बताई सुरक्षित परिवार
1: रेडियो गोदाता एफएम द्वारा संक्षिप्त जारी संदेश
2: Thank you.

समूहन अधिकरण के विधान अनुसूचित सात जनजीवन विधान समूहन अधिकरण संबंधी समूह को निर्णय प्रतिनिधि समूह लगातार प्रमाण पत्र प्रतिनिधि समूह को छात्री परिवर्तन नया समूह अनुसूचित मजदूर समूह अधिकरण के विधान अनुसूचित सात जनजीवन पुनर्पना अनुमोदित विधान की प्रति समूह के प्रत्येक सदस्य नागरिकता प्रमाण पत्र को प्रतिनिधि न्यायपालिक सिफारिश समूह गठन को निर्णय सहित तीन पदक समूह को मासिक बैठक तथा बचत पेपर प्रतिनिधि वार्षिक कार्य समय समूह के साथ अध्यक्ष को

ऐसा स्वप्न प्रसाद के हम दिला चुके हैं। जो कोई यह ऐसा बात की जान रास्ता यह सिटी पर भी रास्ता रही हो बढ़िया फिर वो भोग जाती हो लेकिन हमने फिर प्रभावी दस मिनट साथ में कहा।

0: संध्या सुबह 6 बजे हमारा संदेश माता का स्वागत बा संध्य हिंदू संगम नारायण उत्पादित हमारे संदेश पर अपना साथी एफ एम राजापुर बबई एफ एम बुलरिया पार्टिकल रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोहलपुर रेडियो खातिम जानकी गांव पालिका पार्टी से प्रसन्न प्रसारण की बात हमारे संदेश पर गुरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से थारू समुदाय में प्रधान खेती निम्जल संरथ माता हरिया पुरे पूजा प्रति वही नगर पालिका का इको टूरिज्म तथा व्यावसायिक तरकारी खेती परियोजना में सहकार करना 12 प्रक्रियामक अनुसार छोड़ी का 7,81,000 धार का सामान सहित 3 जना अपराध हिन्दू तीर्थयात्री कल मुस्लिम समुदाय खाता उठा का स्वागत करना डिजिटल हिंसा नियंत्रण कर कानूनी सुधार और परिहार मदद मंत्री पार्टी का कार्य
1: बर्खा खेती निर्भर साल धान खेती मदावरी स्थान बारे में रोकी लगी कामना सहित थारू गांव में हरिया गई हरेली पूजा शुरू किया अनुसार आज पास करी नगर पालिक छल धान पूर्व मोड़ी में हरेली पूजा भाई थारू समुदाय में बर्खा खेती निर्भर पास सावन भदौ महीना में करना ई अनुष्ठान गांव साझा दुटा खंड मना में होना कर 292 फर्कुरिया रनक दामपुर गांव में बेसमनिया पूर्वा मन बहादुर थारू केशव खरा प्रहरी थारू में गांव गवर्नर श्याराम थारू नेतृत्व में हरिया पूरे पूजा पूजक हो मतलब राखी बरस पड़ते घर थोड़ी से 20 रुपया उठा कर चढ़ना सामान्य तेल हरेक पूजा के विशेष पक्ष खेतर हो गुरुआ मंत्र शेष आजन पाँच खेतभन खेती धान बारी में रोग किराने लगा तो खेती मदा हुई स्थला विश्वास प्रधान गांव स्थिर गुरुआ में धर्म उपाली सबको जहां पर खेता में पुगना विश्वास करता है खेल बंधन रोग द्वारा खेती को संबंधी दोनों के काम करें निर्मला परम्परा फिर होगा संग मंडल बिहान गुरुवार मंत्रालय साधन आशा को खेलभन गांव स्थिर गुरुआ का स्थिर गुरुआ में गायन संघ हरिया गुरे हरेली पूजा निंजेवन बर्गर सियाराम थारू बटेल थारू समुदाय में खेती शुरू हो भाषा परम्परागत नाम हरेली निंजल भाषा शुरू करना चलन रखिएगा बाल प्रक्रिया नगर पालिका का दस्तर लंबी खाता में हरेली पूजा कैदेगा

जाकर पूजा करा कर एक बरस पड़ते घर खुले घर करी मशीन 10 रूपए उठाकर विधि पूर्वक घर या खुले अर्थात हरे ने पूजा कर वास्तविक नगरपालिका में विकास क्षेत्र में सहकार्य विस्तार करना उद्देश्य ने कोई का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था प्रमुख वशेष महत्वपूर्ण छलफल वास्तविक नगरपालिका में मेरमेरी विकास मुख्य परियोजना संचालन तथा द्विपक्षीय सहकार्य का संभावना बारे विस्तृत रूप में विस्तार विमर्श करीब नगरपालिका जनता छलफल में इको टूरिज्म

0: चल रही था, कुछ करेगा और सब कुछ सब दिखावा से मिला था।
1: दिखावा
0: दिखा सा विषय मैं थोड़ा थोड़ा करेगा

0: देखाऊ स्वस्थ बच्चा उचारो भविष्य स्तनपान करो स्वास्थ्य ही बताओ।
1: रेडियो
2: खेती बाली में समस्या पड़ रहा है।

प्रभाकर सर्वज प्रभाव प्रश्न उठाई सकता यूईएफए लगाने कर्ता हो रही हिस्से देश में योजना विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने चेतावनी दिखाई इन्फेंटिनो को फीफा अध्यक्ष पद निरंतरता दिने उम्मीदवार प्रति को समर्थन सार्वजनिक रूप में फिर्ता

स्टेट का स्रोत अनुसार स्कॉटिश फुटबल एसोसिएशन के अधिकारियों पर

0: देता कुछ कराइयो औसत कुछ बिछा के मिलाता
1: बिछा और बिजली को बता सके के दिन में कर दाई मैं तो तो पहले तो बिछा शांत तो बिछा बस ये थोड़ा क्या करेगा वो आज एक रात की शाम को कॉल करता पहले से कि कैसे से निकल के क्या था तो आप अपने पास है जो भी भाग जो निकल रहा है इसमें क्या क्या है जो इसके कारण से लग को बोल के तो वो ये कह रहा है तो बड़ा इशारा नहीं करता

0: नियमित रूप में हेतु और शारीरिक व्यायाम भी मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
1: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सात्ता र फल फुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ। सुखमय जीवन बिताउँ।
0: रेडियो